सतगुर होए दयाल त सरदा पूरी है, सतगुर होए दयाल न कब हूँ झूरी है, सतगुर होए दयाल त दुख ना जानिए, सतगुर होए दयाल त हर रंग माणिए। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगों माणते हुए जुड़ चुके जी एक बार फिर एक खूबसूरत शाम खूबसूरत स्रोतों के लिए खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम रेडियो उड़ान लैके जिंदगी जिंदाबाद चढ़ दी कला की पहचान रेडियो उड़ान प्रभ संधु के नाल।

बहुत खूबसूरत, बड़ा पॉपुलर, बड़ा मशहूर गीत अपने समय दा, केदीप जगमोहन कौर होरां दा, बाबा वे कलम रोड। बहुत इन्हें अपने जमाने दे विच प्रसिद्धि कटी सी, उस जमाने दे विच, उस समय दे विच जदों ये गाना नवा नवा आया सी। जगमोहन कौर बहुत अच्छी सिंगर सी, बहुत अच्छी सोहनी सुनखी, बहुत खूबसूरत भी सी और बड़ा नाम सी इसका पंजाबी संगीत जगत दे विच। सो तुसी जुड़े हो साढ़े रेडियो प्रोग्राम नाल, 647-367-5353 साडा नंबर है। तो समा बड़ा तेजी दे नाल दौड़दा जा रहा है, तो गलबात तुसी को करनी होवे करो, 647-367-5353 साढ़े स्टूडियो का नंबर है। अपनी कोई गलबात शेयर करनी होवे, कोई गीत संगीत सुनने का मन करता होवे, कोई अच्छा मन पसंद तो तुसी वो भी फरमाइश कर सकते हो। साडे रेडियो प्रोग्राम दे इस प्रोग्राम दे इस भाग दे जिहड़े मेन स्पॉन्सर ने उन्हें ब्रह्मटन कैश एंड कैरी। ब्रह्मटन कैश एंड कैरी पूरे कैनेडा दे विच 9 वक्खरियां वक्खरियां लोकेशनस दे उपर अपनियां सेवावां दे रहे ने। तुसी लैनी होए घर दी किचन दी कोई ग्रोसरी या होर कोई ग्रोसरी अपने रेस्टोरेंट वास्ते लैनी होए, कोई बर्तन लेना होए या कोई कॉस्मेटिक्स का समान होए, कोई डिस्पोजेबल समान लेना होए, कोई छोटी मोटी दवाई जड़ी बूटी अपने घर दे विच वरती जाण वाली लैनी होए जिहड़ी अक्सर

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दिया सारी आइटमां $4.75 पर पाउंड पर रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड तुहाडे इन्ने सालां दे भरोसे अते विश्वास कारण असी लेके आया कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड ऑफी टिम सर्व्यूबल जीरो ईटोबी को खरीदारी को 416-213-1165 01621311165
1: नमस्कार।

0: आप सभी श्रोताओं
1: में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है सभी को। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साईं राम, या अल्ली मदद। और बहुत ही प्यारा सा मौसम है इस वीकेंड में, तो आप अपने बच्चों के साथ खूब एंजॉय कीजिए। बहुत सारे लोगों के बच्चे ग्रेजुएट कर रहे हैं, उन सभी को बहुत बहुत बधाई। और उनके बच्चों को हम प्रे करते हैं बहुत ही सक्सेसफुल, अच्छे अच्छे जॉब्स मिलें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। और इसी को विचार को लेकर के प्रोग्राम को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर, आउटडोर फर्नीचर, बारबेक्यूज आपको चाहिए, लेटेस्ट जो बारबेक्यू हैं, बड़े टेक्नोलॉजी वाले हैं, आप वो लेने चाहते हो तो आपको मिलेंगे टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है। दूसरी लोकेशन उनके ग्वाल्फ में है, तो आप उनके स्पेशल देखिए, फादर्स डे आने वाला है। अगर आप अपने फादर को बारबेक्यू लेके देना चाहते हो, या फिर आउटडोर फर्नीचर लेके देना चाहते हो, बढ़िया टीवी लेके देना चाहते हो, तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाकर उनकी स्पेशल देखो और फिर उनको कॉल करो, ऑर्डर बुक करो। 905-799-0045-7909-0045। अब फादर्स डे आने वाला है, और भी बहुत सारे किसी के बर्थडेज, एनिवर्सरीज आती रहती हैं। आपको गोल्ड के, सोने के गहने लेने हैं, डायमंड अप टू 70% ऑफ लेने हैं, तो आप एल मदीना ज्वेलर्स पे जाइएगा। एल मदीना ज्वेलर्स आपके लिए मॉल्टन में एयरपोर्ट रोड पे मौजूद हैं। तो और जानकारी के लिए आप एल मदीना ज्वेलर्स को, अगर आप कोई सेट ऑर्डर करना चाहते हो, डिजिटल गहने ऑर्डर करना चाहते हो, तो आजकल वही आज के लिए बेहतर रहते हैं, क्योंकि वो देखने में भारी लगते हैं पर बहुत लाइट, बहुत कम सोने में बने होते हैं। तो आप 905-673-0100 पर कॉल कीजिए। 905-673-0100 पे आप उनको कॉल कर सकते हैं। तो अब अगर आपने किसी किस्म की भी, आपको आपने प्रॉपर्टी खरीदनी है, बेचनी है किचनर वाटरलू गोल्फ में, तो आप नसीब थिंड को कॉल करो 519-546-1260 519-546-1260। अब जब आपने घर खरीद लिया, फिर मूव भी होना है, आपको मूवर चाहिए, तो मूवर के लिए आप HK मूवर्स को कॉल कीजिए। उनकी बहुत सारी टीम्स हैं, और साथ साथ आपको आपके सामान को बड़े हिफाजत से पहुंचाते हैं। आप कॉल कीजिए 416-524-4416-524-6704 HK मूवर्स। मूव होना है तो कनाडा भर में मूव करने में आपकी पूरी वो मदद करते हैं। अब आपके लिए एक गाना तो बनता है ना, तो लेट्स गो टू दिस ब्यूटी सॉन्ग। तो ये दिल लूटने वाले जादूगर, अब मैंने तुझे पहचान लिया। तो क्या है कि जब कोई दिल में को भा जाता है, तो माना था वो देखो था उसमें ग्राफी उनको लिए हैं सिम्बल के, तो लेट्स

एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में, और मैं हूँ आपकी दोस्त मीरा। तो आप के लिए एक और बहुत गीत में ना, तो ये जो गाना है ये भी ऐसा आपको सुनाऊंगी। तो अब आपके लिए घूंघट का जो जमाना था वो आपके लिए वापस ले आएंगे। अगर आपने मूव होना है तो आपके लिए एच के मूवर्स की बहुत सारी टीम्स हैं कनाडा भर में, आप को मूव करने में मदद करते हैं। तो आप ने अगर कहीं भी मूव होना है, आपका हर सामान हिफाजत से पहुंचाते हैं, तो आप कॉल कीजिएगा एच के मूवर्स को 416-524-7704 416-524-6704। तो आइए सुनिए ये प्यारा सा गीत, थोड़ा सा क्लासिकल नंबर, लता जी का गाया हुआ गीत है ये।

0: जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में, और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। जी हाँ, तो बहुत सालों से आपने हमारा साथ दिया है और हमारा प्रोग्राम सुनते हो। जो भाई बहन अपने कमेंट्स भेजते हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। रात को भी आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे, और 10 से 11 बजे आप हमें जरूर सुनिएगा। आज थोड़ा सा मैंने जो प्रोग्राम को चेंज किया है, तो उम्मीद रखती हूँ थोड़ी सी मैंने आपको, कोशिश करूँगी कि आपको गाने ज़्यादा सुनाऊँ। तो अब आजकल गर्मियाँ भी आने वाली हैं, और आपने अगर फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेना है फादर्स डे के लिए, फादर को आपने आउटडोर फर्नीचर, बारबेक्यू लेके देना है, टीवी लेके देना है, तो आप जाइएगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स, सभी से शॉपिंग कर लीजिए। उनकी स्पेशल देखने के लिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाइए। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटरमॉडलैंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है। दूसरी लोकेशन आपके लिए उनकी गोल्फ में है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाइए और उनको कॉल कीजिए 905-799-0045, अपने ऑर्डर बुक कीजिएगा। अब अगर आपने अपनी ऐनक बनवानी है, नज़र की ऐनक, धूप की ऐनक, किसी तरह की भी, तो आप अल्फा ऑप्टिकल पे जाइए। चिंगूजी एंड विलियम्स पार्कवे पे मौजूद है। तो अल्फा ऑप्टिकल, उनके डॉक्टर आता है 2-3 दिन, तो आपको बढ़िया प्राइसेस देंगे। फादर्स डे के लिए सन ग्लासेस आप लेके देना चाहते हो, तो आप अल्फा ऑप्टिकल .com पर जाकर उनके बारे में और जानकारी ले सकते हो। अब आप सुन रहे हो प्रोग्राम संसार, तो आइए आपको ये एक बड़ा सा, बड़ा मजेदार सा गीत सुनते हैं, चुलबुला सा गीत। अगर पसंद आए तो आप जरूर, अगर आप मूविंग करी है तो एच ओवर।
1: हम्म।

थोड़ा सा नए नए जमाने में आ जाते हैं। तो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। मनप्रीत अख्तर ने गाया था, वो अभी इस दुनिया में नहीं है, लेकिन पहले तो मैं अख्तर ये बस अपनी यादें दे गए हैं हमें, और बहुत ही प्यारी सी, बहुत ही से बढ़िया। जब तक जिंदगी इनके इनों को भी लोग सुने, उनके लिए आप ले हो, तो उम्मीद है आपको जरूर पसंद आए। अगर आप टोरंटो आके खरीदना बेचना चाहते हो, तो आप खुशवंत सिंह बैंस को 7747731313। आपने ट्रक रिपेयर करवानी है तो बेस्ट ट्रक रिपेयर एंटायर सेंटर आपके लिए 715 असिस्मेंट रोड मिसिसागा में मौजूद है। और जानकारी के लिए आप उनको 905-625-0055 पर कॉल कीजिए, 9056250055। मास्टर कोलिजन डिपो, अगर आपने किसी तरह का भी कोलिजन का काम करवाना है, आप लंदन में रहते हो, आसपास के इलाके में रहते हो, तो मास्टर कोलिजन अब लंदन में है, और उनका आप उनके मास्टर कोलिजन .com पे जाके आप उनके बारे में और जानकारी ले शाहरुख खान और काजल के ऊपर फिल्माया गया था यह गीत। कुछ कुछ होता है का गाना है ये।

जी हाँ, तो एक बार फिर से तो ये आप पसंद आया होगा। अगर आपको तो इसी तरह आप चेक नहीं कर पाएंगे। सो ये ऐसा दिल्ली यात्रा किसी अजागने का है। तो आप सुन रहे हो रोग हर संसार, आपके लिए गाना बहुत बढ़िया सा।

सही लगता है ना प्यारे, दिल लगता है कि पहले प्यार होता है? बताओ, दिल लगा के फिर प्यार होता है, मतलब दिल मिलते हैं तो फिर कहीं जाके बात बनती है। और ये जो दिल मिलने का बात है वो बहुत जल्दी मिल जाते हैं कई बार, गले तो जिंदगी की असलियत सामने आती है भाग जाते हैं, ऐसे ही होता है ना। तो आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। अगर आपने अभी तक अपना टैक्स नहीं भरा, HST फाइल करनी है तो गुरप्रीत रोडे को कॉल करो 416-302-8135 पे, आप गुरप्रीत रोडे को कॉल कीजिएगा। आप सुन रहे हो प्रोग्राम घर संसार।

अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है, मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ। नानक नाम चढ़दी कला तेरे पण सुभद्दा भला, हैव ए वंडरफुल वीकेंड एंड बी सेफ, डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव।

बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में

सतगुर होए दयाल तसरदा पूरी है, सतगुर होए दयाल न कब हूँ चूरी है, सतगुर होए दयाल त दुख न जानिए, सतगुर होए दयाल त हर रंग माणिए। अकाल पुरख के दिते हुए सारे रंगों माणते हुए जुड़ चुके हैं जी एक खूबसूरत सवेर दे विच, खूबसूरत रेडियो प्रोग्राम पंजाबी लहरा लैके। मैं थोड़ा अपना मेज़बान प्रभ संधु रोज़ की तरह हुक्मनामा साहब सुनिया, मैं भी बहुत आनंद दे विच। एक तो दिन बहुत सोहना, हमेशा ही कुदरत बनाए सारे दिन बड़े खूबसूरत होंगे। तो हुक्मनामा साहब जो थोड़े कानों पैंता, तो गुरबाणी जो सवेरे सवेरे थानू सुनने मिल जाए, तैनू कहते कि सरवण जो आप कर लीए तो फिर पूरा दिन चढ़ती कला वाला हो जाता। सो मेरे नाल जिन्हें भी स्रोते, जिन्हें भी साढ़े भैन भरा हुक्मनामा साहब की सांझ पा रहे सी या गुरबाणी सरवण कर रहे सी, सारयां दा प्यार सत्कार सत श्री अकाल आदाब नमस्कार। तुसी जुड़े हुए हो पंजाबी लहरां दे नाल, ते अज दी खूबसूरत सवेर शनिवार दा खूबसूरत दिन आ, ते अज भाई वीकेंड आ, सारयां दीयां छुट्टियां आ। 6:16 हो चुके आ, थोड़ा साडा साथ होण तों लैके 8 बजे तक बणिया रहूगा। पर इह जिहड़ियां टाइम दी चेंजिंग थोड़ी जी हो रही है, अगे जाके रमेश जी साडे नाल जुड़नगे ते उहदे बारे तुहानूं असीं होर इस आई थिंक टाइम चेंजिंग दी गल्लबात करांगे, क्योंकि हुण आपां जुड़िया करांगे वीकेंड नूं, शनी ऐतवार नूं 6 to 8 जिद्दां पहलां प्रोग्राम दा पूरा सरचार्ज चलदा सी। सो उसी तरह आपां इस प्रोग्राम दे विच जुड़िया करांगे। तुसीं बहुत सुलझे सियाणे ते समझदार स्रोते हो, समझ सकोगे कि चेंजिंग्स ऑलवेज थोड़ियां बहुतियां प्रोग्राम्स हुंदियां रहिंदियां। सो हुण तंबड़ साहब प्रोग्राम लैके आया करनगे मंडे टू फ्राइडे 6 to 7 तक, ते 7 to 8 तक फिर थोड़ा साडा साथ बणिया रहूगा। रमेश जी उसी तरह 1 घंटे की न्यूज़ थोड़े नाल साझियां करिया करनगे। सो 6 to 7 तंबड़ साहब आया करनगे, तुसीं ऑलरेडी उन्होंने सुनते हो AM 530 ते, पहला तुसीं उन्होंने 1350 ते सुनते सीगे। सो वो भी आ चुके ने, बहुत नतड़क बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालक, और नाल दी नाल भी कही कि बहुत धड़लेदार जे रेडियो होस्ट कही। तो तंबड़ साहब तुसीं सवेरे 6 to 7 सुनिया करोगे, तो 7 to 8 फिर पंजाबी लहरां लैके मैं थोड़ा मेज़बान प्रभ संधु हाजिर होया करूँगा, ते नाल रमेश हुशियारपुरी जी। उस तरह ही खबरों का सिलसिला अपना जारी रहेगा। हो सकता कि हुक्मनामा साहिब की जिहड़ी सांझ आ उस दे बारे जाके अगे देखांगे असीं इस नूं किवें कंटिन्यू करना, क्योंकि दिन का जिहड़ा ऑलरेडी सुझाव आ वो ऑलरेडी दिन 5-6 बजे तक शुरुआत हो जाती, तो 7 बजे काफ़ी लेट हो जाता। सो इस बारे जिदा भी मैनेजमेंट का कोई अगों रिस्पोंस आऊगा जरूर तुहाडे नाल साझा करांगे। पर फिलहाल वीकेंड 6 to 7 उहदे विच कोई बदलाव अजे, 6 to 8 माफ करना, उहदे विच कोई बदलाव नहीं रहेगा। सो ओनली जिहड़ा वीकडेज़ मंडे तो लैके फ्राइडे तक जिहड़ा प्रोग्राम होया करूगा उहदे विच आपां 1 घंटे की सांझ तुहाडे नाल पाया करांगे। सो हुण रुपिंदर जी की जगह पर मेरी ड्यूटी लगी है जी, सो मैं तुहाडे रूबरू आया करूँगा। सो बाकी गल्लां बातां अगे जाके रमेश जी उन्हां नाल भी करांगे। सो 905-673-3337 स्टूडियो का एक नंबर 905-673-3337 ते प्रोग्राम की शुरुआत करदे आं कि उम्मीदां दे वहां नूं हर हाल विच वगदा रखी, उम्मीदां दे वहां नूं हर हाल विच वगदा रखी, आसा वाले बनेरे ते कोई दीवा तां जगदा रखी, कोई दीवा तां जगदा रखी। सो दीवे जगाउणे आसां दे, उम्मीदां दे, चढ़दी कला दे। सो पंजाब दी गल करांगे, रमेश हुशियारपुर जी साडे नाल जुड़नगे। सो पंजाब दी गल, सियासत दी गल, ते पंजाब दी गल तो मैनूं बड़ा ही खूबसूरत रणजीत बावे होणां दीआं सतरां याद आईआं। सो ओह सुण लईए, तद तक रमेश हुशियारपुरी होणां नूं आपां लैंदे आं नाल, ते गल्लां बातां दी सांझ पाउणे आं, ते अज दे प्रोग्राम दी शुरुआत करदे आं। सो

यार मनने तो बिना रब नहीं मनना क्या बात है। सो मैनू रूह दा हाणी दस के, मैनू रूह दा हाणी दस के, यार इदा भी कर जांदे आ। जरूरी नहीं कि सारे यार रब वर्गी होण। मैनू रूह दा हाणी दस के, जहर दे गया पानी दस के, मैनू रूह दा हाणी दस के, जहर दे गया पानी दस के, मैनू अपना आप भुलाता उन्हें एक कहानी दस के, कखा वांगू रोल दिता है, कखा वांगू रोल दिता है, मैनू दिल दी राणी दस के, मैनू दिल दी राणी दस के।

रसैया हाथ गैरां दा फड़दे देखे, हाथ गैरां दा फड़दे देखे, रुखे पत्ते झड़दे वेखे, हाथ गैरां दा फड़दे वेखे, रुखों पत्ते झड़दे वेखे, कुछ अपने मैं सड़दे वेखे, जिन्हों लुको के रखिया रब कोलों मैं, जिन्हों लुको के रखिया रब कोलों मैं, वो दुनिया दे नाल लड़दे वेखे, लड़ लड़ मंगिया किस्मत तो मैं, वो साढ़े नाल ही लड़दे देखे, साढ़े नाल ही लड़दे देखे।

0: अजी सुनते हो, कहाँ गुम हो?
1: अरे महेश अभी तक ऑफिस नहीं आए, पता नहीं मीटिंग थी। हेलो हेलो हेलो।
2: जब मैं रेडियो आवाज सुनता हूँ तब तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। बम्प टू बम्प ट्रैफिक एंड बम्प टू बम्प कॉल्स, ऐसा ही होता है जब आप सुनते हैं हर सुबह 9 to 10 मंडे टू फ्राइडे एंड सैटरडे 11 to 1 रेडियो आवाज।
3: सो रेडियो आवाज सुन रहे हो M530 जत्ते, मैं 9 to 10 मंडे टू फ्राइडे तो अगली होना है ते सैटरडे नूं 10 तो लेके 1 बजे तक ए शो दे विच लाइव ऑन लोकेशंस असीं चलाउंदे आ। लाइव ऑन लोकेशंस दे विच तुसीं जिहड़े अलग अलग लैवल ते, जिवें असीं मिल्टन फोर्ड पिछे लाइव ऑन लोकेशन करके हटे हाँ, ग्रीन हाउस दे वास्ते ग्रीन वैली गार्डन सेंटर ने जड़े गार्डन सेंटर्स दा लाइव ऑन लोकेशन किया, बहुत दुनिया पहुँच रही है। कोई दिन नहीं यह जहाँ होंगे जिस दिन मैं ग्रीन वैली गार्डन सेंटर वालों का फोन नंबर नहीं दिता, भावें अज भी बारिश है। तुसी इनडोर ते आउटडोर दोनों उन्होंने फैसिलिटीज़ ने, तुसी जाके अज सोहने सोहने जे बूटे लियाओ ते ये बूटे जड़े हैगे ने तुसी अपने लगा देने ने, जो बाहर बारिश रख देने, देखियो किवें वधदे फुलदे ने। ग्रीन वैली दे दो लोकेशन ने, एक हैगी है 1100 11665 मकवीन ड्राइव, मोटा मोटा याद करा देना मकवीन दे उत्ते ना, ते मेफील्ड ते ग्रीन वैली ग्रोसरी स्टोर आ, उस ग्रोसरी स्टोर की पार्किंग लॉट के विच ग्रीन हाउस बनाया इन्होंने। दूसरी लोकेशन हैगी है 2547 एबल्टन रोड ब्रैम्पटन, एबल्टन 2547 EMBELTON एबल्टन रोड ब्रैम्पटन। तो कोई भी जानकारी ग्रीन वैली आने, इन्हों को फुल इदा आए ने, गमले इदा के आए ने, फ्लावर पॉट्स इदा के आए ने कि जिहड़े तुसी कदे भी नहीं देखे होंगे। संतोष तुसी की लैके आए थो?
4: जी अमन जी, मैं गई सी बहुत ही प्यारा फार्म हाउस ही कह लो, इन्ना सोहना, और मैं उतो हैंगिंग बकेट्स लैके आई हाँ अपने घर बाहर सजाने वास्ते, प्लस मैं पनीर ही लैके आई हाँ और बहुत वधिया वधिया सब्जियां लगाईया, और प्लस इन्होंने ना अमन जी मैनू जीरो नॉलेज सी गार्डनिंग का शौक सीगा, बट कईयां नू नॉलेज नहीं हुंदी, उन्हां विचों एक मैं हैगी हाँ। सो इन्होंने मैनू बहुत वधिया दस्सिया कि किवें असीं लगाना आ और किवें उहदी टेक केयर करनी आ। सो जिहड़े भैन भरा जिन्हां नू शौक है बट पता नहीं आ, वह भी पहुंचो ग्रीन वैली गार्डन सेंटर, दो लोकेशन है इन्हों दियाँ, और जल्दी जल्दी पहुंचो, बहुत ही मजा आऊगा तुहानू उत्थे जाके।
3: सो तुसी दोनों लोकेशन का फोन नंबर लैण लई नंबर नोट करो, ग्रीन वैली 11665 मकवीन, तो दूसरी 2547 एम्बल्टन रोड, 6472226501647222560 के उत्ते कॉल करनी है। एक बार फिर तो चरणप्रीत मेरे नाल, चरणप्रीत जिहड़ा कि शैफ चरणप्रीत के नाँ ते मशहूर आ, शैफ चरणप्रीत जिहड़ा हैगा तुहाडे इवेंट्स नूं वधिया बना दिंदा है। तुसी बर्थडे पार्टी हैगी आ उहदे वास्ते डीजे, उहदे वास्ते साउंड सिस्टम बहुत वड्डा, लाइटनिंग सिस्टम उहदे वास्ते, बार बनी हुई है उहदे वास्ते, फ्लोर बनया होया हैगा, नाल नाल डाइनर बने हुए ने, बूथ बने हुए ने अंदर। तुसी वैसे भी पार्टी तो बिना खाण पीन जा रहे हो, जो कि नज़ारा इंडियन रेस्टो लाउंज इहदा नाँ हैगा, बाहरले पासे स्पैशलाइज ये करता, खुली पार्किंग है, 100 गड्डी लाउणी है 100 ला लो, नाल दी नाल बाहरले पासे फूड ट्रक लगाउणा तुसी, ये फूड ट्रक भी प्रोवाइड करते हैं, बाहर फूड ट्रक अंदर किचन, दो दो किचन चल दिया ने, बारबीक्यू करवाना है या पीज़ा की केटरिंग करवानी है। थोनों टोरंटो दे विच गारंटी करते हैं, ऑन एयर बोलते हैं, टोरंटो च कोई भी तुहानू इस चीज़ लई हामी नहीं भरूगा, इतने फूड ट्रक भी नाल लग जाता है क्योंकि फूड ट्रक परमिट है इनको रेस्टोरेंट दे विच, फूड ट्रक इसे प्लाजे च लग्या हुंदा इन्हां दा, फूड ट्रक लग गया नाल ही पीज़ा स्टोर आ विच साइड ते, दूसरी साइड के उत्ते नज़ारा के बैक साइड ते, वो पीज़ा शैफ जिहड़ा है वह भी सेम मैनेजमेंट कंपनी के अंडर है, तुहानू पीज़ा तुहाडे बच्चों का अलग तो प्रॉपर मैन्यू मिल जाता है, तो तुसी जरूर जिहड़ा हैगा नज़ारा के उत्ते अपनी पार्टी बुक करने लई नंबर है 6476338 78। कित होर जाने की लड़ नहीं, कोई धक्के खाने की लड़ नहीं, इतने आ जाओ, टेंट ला दो, फिर बहरों खाना लैन चल जाओ, लाइव केटरिंग भी नज़ारा वाले करते हैं, पर जे तुसी हॉल लेना है लाइव केटरिंग भी होंगी है, तुहाडे घर भी करवानी है नो प्रॉब्लम, तुहानू टेंट डेकोरेशन लाइट्स मिल जाएगियाँ। तो जे तुसी चाहते हो कि 5-6 वॉशरूम बने होण, नज़ारा दे विच वॉशरूम एयरपोर्ट वांगू बने हुए हैं, जे तुसी जाके देखोगे ना तुसी वाकई कहोगे कि एडे रेस्टोरेंट दे विच कदे असीं वॉशरूम नहीं देखे इंडियन रेस्टोरेंट दे विच, वड्डे वड्डे दो वॉशरूम ने जिहड़े तकरीबन 500-600 स्क्वेयर फुट च बने हुए हैं, 600 ਸਕੁਅਰ ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਤੋਂ 7 ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਾਰਾ।

0: और सुल्तान जी, बिना सुल्तान जी, ऑन एयर प्लीज गो अहेड।
1: थैंक यू वेरी मच जी। ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसेस का मैसेज देवांगे, क्योंकि आज जड़ियां डील्स मिल रही हैं जी, ये लो इन्वेंटरी होने करके जिदा ही सोल्ड आउट हो गया। जिदा कि हम 85 इंच टीवी, सिर्फ 3 टीवी इन स्टॉक है, तो 3 लकी कस्टमर कैन गैट इट। इस तो बाद टीवी तुहानू $1800 तो घट नहीं मिलना। 85 इंच का QLED $1299 का जे तुसी लेना है, तो ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसेस से 3 टीवी अवेलेबल है। मिस ना करना, क्योंकि इस तो बाद यह $1800 का QLED क्वांटम डॉट क्वांटम प्रोसैसर 85 इंच सैमसंग, 6 महीने तुसी पे करना है जी, कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिस तरह 55 इंच भी $399 का या 65 इंच $699 का लेना है, तद भी 4-4, 5-5 पीस ही इन स्टॉक हैगे है। क्विक एक्ट करोगे तो विन विन सिचुएशन च रहोगे, क्योंकि ये लोएस्ट प्राइस गारंटी है। सैमसंग स्पॉन्सर कर रहा फीफा वर्ल्ड कप नू, ते वर्ल्ड कप नू जो स्पॉन्सर कर रहा सैमसंग, बिग स्क्रीन टीवी के उपर वड्डा डिस्काउंट ताडे लई लैके आए हैं जी। एक्सकलूसिव 801 बोवे ड्राइव वैसट वाली लोकेशन से तुहानू मिल रहे हैं। पर 98 इंच अज बाय करो, कल डिलीवरी हो जाएगी, सिर्फ $1999 का सैमसंग का 98 इंच भी मिलेगा ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसेस से। 1999 तुसी 6 महीने च पे करोगे, कोई इंटरेस्ट नहीं है। 905-450-2828 नंबर है। तो बिल्ट इन किचन वाले तो बिल्कुल मिस ना करन, क्योंकि मंथ एंड आ रहा, तुहाडे घरां दी क्लोजिंग्स हो रही है या तुसी रेनोवेट कर रहे हो, तो 40% का डिस्काउंट, ह्यूज डिस्काउंट है जी, जिहदे च बिल्ट इन कुकटॉप, बिल्ट इन वाल ओवन, बिल्ट इन माइक्रोवेव, बिल्ट इन डिशवाशर, बिल्ट इन काउंटर डेप्थ फ्रिज, पूरे का पूरा बिल्ट इन किचन $12,000 वाला सिर्फ $6,900 च मिल जाएगा। डेमो किचन ऑलरेडी असी लगा दिता, तुसी शोरूम च आके डिस्प्ले ते चेक कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो, फिर डिलीवरी स्केजुअल करना। पर गारंटिड तुसी $5100 ये सेव करोगे। 905-450-2828 नंबर है। फ्रंट लोड वाशर एंड ड्रायर या टॉप लोड वाशर एंड ड्रायर या स्टैकेबल वाशर एंड ड्रायर या कॉम्पैक्ट वाशर एंड ड्रायर, लॉन्ड्री च कोई भी वाशर एंड ड्रायर देख रहे हो, $600 to $800 की सेविंग है। क्योंकि फ्रंट लोड वाशर एंड ड्रायर, वाशर भी स्टीम तो ड्रायर भी स्टीम फीचर के नाल, प्लैटिनम सीरीज, प्लैटिनम कलर, प्रीमियम ब्रांड, तुहानू $2500 वाला सिर्फ $1799 का मिलेगा। $800 तुसी वाशर एंड ड्रायर से सेव करने हैं। पहुंचना जी तुसी 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चंकूजी ऑन बोवेड है। ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसेस 905-450-2828, 905-450-2828 जी।
0: ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसेस से जरूर पहुंचोगे, 905-450-2828 फोन नंबर है। असी डॉक्टर गरेवाल ने, डॉक्टर जतिंदर कौर गरेवाल, मैं काफ़ी टाइम तो गलबात कर रहा, एक हूँ प्रमोट करना, प्रमोशन करनी, एक हूँ कि रिलेशन बिल्ड करने, जिन्हों आप टाइज कह दें, टाइज के बंधना। हर बंदा जो सुन रहा है उन्होंने बॉडी कुछ ना कुछ हल्की मोटी प्रॉब्लम है। साइंस बहुत अगे पहुँच चुकी है, साइंस हर चीज़ का इलाज कर देती है
2: जी,
0: जे समय सिर हो जाए। जे समय सिर नहीं होया, तुसी चेक नहीं कराया, अणगौलिया कर गए, पता नहीं लग्या, उही बीमारी वड्डा रूप अख्तियार कर लेंदी।

0: Ambler Drive, Brampton. Major intersection, Steels and Kennedy, 90545-12600.
1: ओ यार, बिजनेस का माड़ा हाल हो रहा है। कितनिया तरकीबा लगा चुका पर फिर भी कोई गल नहीं बन रही।
2: निर्बल बाबे ने क्या से कृपा हो जाओगी, नींबू मिर्चा टंगो, पर कृपा तो हो ही नहीं।
3: ऑनलाइन भी मार्केटिंग करके देख ले पर कोई रिजल्ट ही नहीं आया।
4: एदा मतलब तुसी रेडियो आवाज ट्राई नहीं कीता।
5: रेडियो आवाज, रेडियो आवाज।
6: ओ हीट वेव आ गई।
7: की गल इतनी जल्दी?
6: हाँ जी, ते पता है इसका की मतलब?
7: सनस्क्रीन, हाइड्रेशन, एनका ते सेविंग्स भी।
6: क्योंकि होलसेल क्लब हीट वेव आ गया है, होने लगो 3.78 लीटर फ्रैंक्स रेड हॉट सॉस सिर्फ $14.99।
7: ओहो,
6: उत्ते तो कीमत 15 जुलाई तक लॉक ने।
7: ओ भाई, इतना गर्मा गर्म डील है।
6: कोई मेंबरशिप फी नहीं। और जानकारी लाई स्टोर विच वेखो जा होलसेल क्लब.ca ते जाओ।
8: होलसेल क्लब, होल लॉट ऑफ वैल्यू।

0: Ladies and gentlemen, introducing from CHLO AM 530, the number one radio host in the world, Dave Tatla!
1: Good afternoon, welcome to Dave Tatla Show. आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशावादियां उम्मीद करते हैं कि तुहाडा अज्जा दिन अच्छा गुजर रहा होगा। साडी कोशिश रहेगी कि एक घंटे विच तुहाडे ढेर सारे डालर तुहानू बचा के देईए, चाहे अपलायंसेस होण, चाहे टेलीविजन होण, चाहे लॉन्ड्री होवे, चाहे सोफे होण, चाहे डाइनिंग सेट होवे। स्टूडियो च सुल्तान जी साडे नाल हाजिर ने। सर जी वेलकम टू द शो।
2: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ते ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसेस दा अज मैसेज एहो जिहा जिहड़ा कि खास तौर ते सुनण वाला है।
1: हां जी,
2: और खास तौर ते इहदा फायदा चुकना।
1: ओके, की हो रहा?
2: आज जेड़ा जी सैमसंग ने स्पेशल प्राइसेस दितियां, क्योंकि फीफा दा वर्ल्ड कप जेड़ा उन्नू सैमसंग स्पॉन्सर कर रहा जी।
1: ओ बल्ले, फिर तो डिस्काउंट वगैरह भी चंगे होंगे।
2: बहुत डिस्काउंट, हाई एंड डिस्काउंट उन्होंने दिते है जी। सैमसंग दा अगर तुसी 85 इंच लेना है क्यू एल ई डी, अज क्वांटम डॉट क्यू एल ई डी हाई एंड टेक्नोलॉजी 85 इंच $2000 वाला $1299 का मिलेगा। जरूर फायदा चुक सकते हो।
1: सो 2000 वाला टेलीविजन 1299 दा,
2: सिर्फ 1299। हाँ जी, और 1299 भी तुसी 6 महीने च पे करना, कोई इंटरेस्ट नहीं है। 55 इंच भी लेना जे, वो भी 399 ओनली।
1: लो जी, टेलीविजन लेना, फीफा वर्ल्ड कप आ रहा, टॉप दे गेमां देखने लई, हर तरह की स्पोर्ट्स देखने लई, जां मूवियां देखने लई, जो भी देखना तुहाडी इच्छा, लेकिन टेलीविजन लेने लई Brampton TV and Appliances.
2: Even तुसी देखो इहदे च बिग स्क्रीन टीवी ते तां डिस्काउंट मिल ही रहे
1: हैं। हाँ जी,
2: पर 65 इंच टीवी सिर्फ 699 दा।
1: 65
2: इंच टीवी, जबकि इहदी भी $900 प्राइस है, पर 699 दा Brampton TV and Appliances तो मिल जाएगा। लिमिटेड इन्वेंटरी इन स्टॉक है, लोएस्ट प्राइस गारंटी है, मिस ना कर जाना। राइट वे कॉल कर लो, गारंटिड तुहानू इह लोएस्ट प्राइस मिलनगियां। पेमेंट भी तुसी 6 महीने च करोगे, कोई इंटरेस्ट नहीं है। जिथे 85 इंच क्यू एल ई डी तुहानू 1299 दा मिल रहा, उत्थे 98 इंच नू भी मिस ना कर जाना। सैमसंग दा 98 इंच जिहड़ा $3500 तो $1999, $1500 दी सेविंग है ओनली 90 इंच टीवी।
1: लो जी, ऑलमोस्ट 50% तो उपर दी सेविंग हो रही है 98 इंच दा टेलीविजन। तुसी अखां बंद करके इमेजिन करो कि तुहाडे घरे 98 इंच दा टीवी लग्या होया, सिनेमे तो घटा जिड्डे जिड्डे सिनेमे दे स्क्रीनां उड्डा दा ए 90 इंच टीवी है।
2: बिल्कुल, और तुसी जे वाकई स्पोर्ट्स दे शौकीन हो या मूवीज दे शौकीन हो, घर च बिग स्क्रीन टीवी ते मूवीज या स्पोर्ट्स देखना, फिर तुहाडा बनदा कि इस लोएस्ट प्राइस तो फायदा चुक लो। मैं गारंटी कर दिना, जिदन साडे कोल इह टीवी खत्म हो गए, ये सिर्फ 6 टीवी इन स्टॉक है, जिस दिन टीवी खत्म हो गया तुहानू इह 3500-3000 तो घट नहीं मिलना। राइट वे बुकिंग कर लो, बिल्कुल तुसी बुक कर सकते हो। मई जून जुलाई की कोई भी डिलीवरी डेट रखी जा सकती है, क्योंकि तुहाडा 6 महीने नो इंटरेस्ट पेमेंट प्लान तो डेट ऑफ डिलीवरी तो शुरू होना है ना जी। सो हजे तो तुसी 10% डिपॉजिट करना, $200-$300 ना तुहाडा डील लॉक हो जानी है। 905-450-2828 जिहड़े भी कस्टमर डायरेक्शन लेना चाहते, टाइमिंग देखना चाहते या कंपेयर करना चाहते, वह जरूर Brampton Appliances, ए वन वर्ड है, BramptonAppliances.com ते जाके चैक कर लो, कंपेयर कर लो। वॉक इन कस्टमर नू जिहड़ा असी एडिशनल डिस्काउंट दे रहे हैं उहदा फायदा चुक लो, फिर डिलीवरी जिहड़ी है उहनू स्केजुअल करियो। 905-450-2828 905-450-2828।

0: है सेल, उदे वेच 40 तो 50% का डिस्काउंट भी मिलेगा। जरूर विजिट करियो, 6 महीने च पे करना है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, फ्री होम डिलीवरी है। पहुंचना है तुसी जी 7 बजे तो पहले पहले 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट, जस्ट ईस्ट ऑफ चंकूजी, ऑन बोवेड है, ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसिस। 905-450-2828, 905-450-2828।
1: 32 इंच का टेलीविजन सिर्फ $80 का, 32 इंच का टेलीविजन सिर्फ $80, ब्रैम्पटन टीवी अपलायंसिस 905-450-2828।

0: ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਆਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਸੀ ਯੂਨੀ ਗਲੋਬਲ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਗੌਰਮੈਂਟ ਫੰਡਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਨਾਗਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਗਪਾਲ ਜੀ, ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਚਾਰ ਜਣੇ ਆ, ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਦੇ ਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ 437-264-3175 'ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਹਸਬੈਂਡ ਵਾਈਫ ਦੋ ਕਪਲ ਆ, ਜਸਟ ਬੱਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਨਕਮ 70,000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਿਨੈਰੀਓ ਆ? ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸਿਨੈਰੀਓ, ਦੋ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਕੀ ਸਿਨੈਰੀਓ?
1: ਹਾਂਜੀ, ਸੋ ਯੂਨੀ ਗਲੋਬਲ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ, ਹਮ 7 ਈਅਰਸ ਸੇ ਹਮ ਕਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਸਲਟਿੰਗ ਮੇਂ ਹਮਾਰਾ ਲਾਈਕ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਅਬ ਇਸਮੇਂ ਹਮ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫੰਡਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਮੇਂ ਡੀਲ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਕੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਸਾਥ ਮੇਂ ਆਪਕੋ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਆਪਕੇ ਖਾਤੇ ਮੇਂ ਲਿਵਿੰਗ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫ੍ਰੀ, ਕੋਲੈਟਰਲ ਫ੍ਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਹੋਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 30,000-100,000 ਇਜ਼ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ। अब इसमें से जो अप्रोक्सीमेटली हाफ पोर्शन है वो क्या है, नॉन रिफंडेबल ग्रांट्स। अब हम समझते हैं एग्जाम्पल से, अगर फैमिली ऑफ फोर है, हस्बैंड वाइफ दोनों इजी कोर्स करते हैं घर के कंफर्ट से, फुली ऑनलाइन वाला, जो कि हमारा यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट, ज्यादातर क्लाइंट्स वही चूज करते हैं, जिसमें असाइनमेंट्स हैं, एग्जामिनेशन नहीं है, और 2-3 घंटे देने जी, IIT में एडमिशन नहीं हो रहा आपका, सिंपल कॉलेज में एडमिशन हो रहा है। अब इसमें कहते हैं फैमिली ऑफ टू में बनेगी फंडिंग up to $45,000, family of three mein banegi up to $60,000, family of four mein banegi up to $80,000, family of five mein agar husband wife dono padhte hain to banegi up to $100,000. ab maze ki baat isme agar family of four hai, jaise aapne example diya mujhe, family of four mein 80,000 mein se $40,000 kya hai, non refundable tax free grants. Rest $40,000 kya hai, optional loan at 0%, jo ki 1-1.5 साल तक 0% पे, उसके बाद अपने पे बैक करना स्टार्ट करना है जी, 1.5 साल बाद पे बैक करना अपने स्टार्ट करना है, तब ब्याज दर क्या है, 2.5% पूरे साल का। मतलब फंडिंग हासिल करी आपने गवर्नमेंट से, स्किल भी हासिल करी, और फंडिंग भी थोड़े टाइम की बात रहेगी जी, उसके बाद तो हम यूज करेंगे वर्ड लोन। अभी हम क्या यूज कर रहे हैं, ग्रांट।
0: ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਚੈਰੀ ਔਨ ਦੇ ਟੋਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਨ ਆ ਉਹ ਇੰਟਰਸਟ ਫਰੀ ਲੋਨ ਆ, 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਮੋੜਨਾ 0% ਇੰਟਰਸਟ, ਅਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ, ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕੁ ਤੱਕ ਇਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ?
1: 30-90 ਡੇਜ਼ ਮੈਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਲਾਇੰਟ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਅਕਾਊਂਟ ਮੈਂ, स्टूडेंट के अकाउंट में, स्टूडेंट कोई भी हो सकते हैं, कोई एज लिमिट नहीं है जी, गवर्नमेंट की पॉलिसी एज पे डिस्क्रिमिनेट नहीं करती, 30-75 ईयर्स तक के हमारे क्लाइंट्स हैं, और बहुत ज्यादा नंबर है, हम मतलब 7 ईयर से बिजनेस में है। तो इसमें इसमें यही है कि 2-3 बैच रह गए हैं, 70 दिन के बाद 1 अगस्त से जब नया अकेडमिक ईयर स्टार्ट होगा, तब आज जो फैमिली ऑफ फोर में हस्बैंड वाइफ दोनों पढ़ रहे हैं, 80,000 में से $40,000 क्या है जी, नॉन रिफंडेबल ग्रांट्स। तब 1 अगस्त के बाद अगर आप एनरोल करेंगे किसी बैच में, तब क्या होगा, 80,000 का लोन आएगा, ग्रांट गवर्नमेंट कट कर रही है पूरी। तो इसलिए आप अभी एनरोल करें। हमारे पास रोज आज भी लाइक 3 क्लाइंट्स जो आए थे वही कह रहे थे, सर अभी कर दो एडमिशन, हम आपको 1 साल से सुन रहे हैं, अब हम पता लग गया बंद होने वाला है, तो हमें कर दो, बहती गंगा में हाथ धो लीजिए जी, फंडिंग आज मिल रही है, जो गवर्नमेंट $30 बिलियन यूक्रेन को दे चुकी है, वो अगर $4 बिलियन एडुकेशन में स्पेंड करे तो कोई कैच नहीं है।
0: वेरी गुड, ते ए भी नहीं कोई जिहड़ी फीस पैसा होगा, वो पैसे दा सी की करना, ए तां नहीं कोई टर्म हैगा कि इहनूं तुसीं इत्थे ही स्पेंड करना, तुसीं ओह कोर्स दे रिलेटेड जॉब करोगे ताहीं तुहानूं ए फंड मिलेगा, कुछ इदां दा तां नहीं?
1: कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई कंडीशन, कोई कोलैटरल, कोई सिक्योरिटी नहीं है। गवर्नमेंट आपको एजुकेशन के लिए फंड कर रही है, बैंक से फंडिंग नहीं ले रहे। लिविंग एक्सपेंसेस किसी के लिए है, ग्रोसरी करना किसी के लिए है, गैस भरना, आप गैस का प्राइस तो नहीं रोक सकते ऊपर जाने से, लेकिन आप स्किल भी हासिल कर सकते हैं, और गवर्नमेंट की फंडिंग अपने अकाउंट में हासिल करते हैं डायरेक्ट। आज आप एनरोल होते हैं, आपको 1 हफ्ते में लिंक आता है गवर्नमेंट से, आपकी ईमेल आईडी पे आप अपना बैंक खुद सेटअप अपने घर पे अपने बच्चों से कराते हैं। हमारे जितने क्लाइंट्स उनकी एज मिडल एज है, कुछ 75 ईयर्स के भी है, उनके बच्चे उनका बैंक सेट करते हैं, हम तो हाथ लगाते नहीं उस चीज को,
0: खुद खाते पहले ताडे खाते च पैसे होंदे, तुसी ट्रांसफर करदे हो परिवारां नूं जां?
1: नहीं जी, इट्स वेरी ट्रांसपेरेंट। आज आपने एनरोल करा, हाँ, एक हफ्ते में आपको ईमेल आया, आपने खुद अपना बैंक अपने घर पे खुद ही अपने बच्चों का सेट कराया, बच्चे बड़े होशियार है ना, तो जैसे हमारे एक मिडिल एज क्लाइंट्स हैं, बच्चे उनके बच्चे ही कर देते हैं वाले आईटी वाले काम सारे, तो विद इन 30 to 90 days में क्लाइंट्स के अकाउंट में फंडिंग चली जाती है डायरेक्ट, और कोई इसमें कैश नहीं है जी। हम 7 years से बिजनेस में, आप टेंशन ना लीजिए, हम लाइक अच्छी तरह काम कर रहे हैं, लोग आके हम खुद जब काम हो जाता है इतनी दुआएं ब्लेसिंग्स देते हैं, तो इसलिए इसमें कुछ कैच नहीं है, लोग आते हैं हमें कहते हैं सारा मेरा
0: पैसा नहीं। जे कोई 60 year old आ ते ओहो उन्हें लगता कि सानू बेटा से एग्जाम तक एनरोल तो हो जाएंगे, पर सब तो एग्जाम देने सानू कई एग्जाम तो फोबिया होंदा, ते ओ फिर पेपर पास करना जरूरी है जी जां किवें?
1: इसलिए ज्यादातर क्लाइंट्स चूज करते हैं असाइनमेंट्स वाले कोर्सेज जो हैं, जो बहुत ही सौखे ने।
0: अच्छा,
1: कुछ ऐसे जो प्रोग्राम भी हमारे पास जिसमें सेल्फ स्टडी है, जिसमें टीचर है ही नहीं, टीचर लेड नहीं है, वो सेल्फ स्टडी मॉडल है, गवर्नमेंट उनको ही फंड करती, गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम्स, गवर्नमेंट फीस।
0: तो जस्ट अटेंडेंस ते असाइनमेंट ही नहीं ते जिदे ना कोर्स पास हो जाने।
1: अटेंडेंस 75% होनी चाहिए और असाइनमेंट्स आपने देनी है, जैसे कुछ कोर्सेज में बहुत ही इससे भी ईजी है जो हमारे पास है, तो आप आएंगे हम उसको एवेलुएट करेंगे, आप PR स्टेटस आपका होना चाहिए प्रोटेक्टेड पर्सन है सिटीजनशिप का, एंड जितनी आपकी इनकम कम है, सही बोल रहा हूँ छोटी बोल रहा, कम 2024 के नोटिस असेसमेंट पे, और जितना आपका फैमिली साइज ज्यादा है उतनी ज्यादा फंडिंग आपको आती है, जैसे डेंटल केयर प्लान है, जैसे $10 चाइल्ड केयर वाला प्रोग्राम है गवर्नमेंट का, वैसे एजुकेशन का प्रोग्राम है, कोई कैच नहीं है।
0: सो दोस्तों एक बार भाई जी नंबर अपना साझा कर दो, तो मेन चीज है गवर्नमेंट कहती है भाई पढ़ो तो पढ़ाई लिए तुहाडी असी हैल्प करांगे, ग्रांट ते लोन तुहानू दे रहे ने, ते ए बड़ा जल्दी ए प्रोग्राम बंद हो सकदा, बंद नहीं इहदे विच चेंजेस आ सकदे ने, ग्रांट बंद हो सकदी आ। सो नागपाल जी एक बार नंबर शेयर कर दो।
1: हाँ जी, और छोटी सी चीज, हमारी फीस काम होने के बाद $199 to $499 है, कोई परसेंटेज कोई कमीशन नहीं है, आपके अकाउंट फंडिंग आती है, फिर आपने अपनी ईमानदारी से हमारी फीस देनी होती है, हम फीस

धड़कते दिलों और सुनते कानों को दानिश बुखारी का एक बार फिर से मोहब्बत भरा सलाम। आज फिर आपके दिलों पर दस्तक देने की इजाजत चाहता हूं। अपनी पेशकारी के जरिए आपको शेर व शायरी और गजलों से मुतासिर कर सकूं, तो चलते हैं गजलों की मुख्तलिफ दुनिया में, जिसे आपकी मोहब्बत ने नाम दिया है कहकशां का। जिस्मों की थकन देखी, रूहों का सफर देखा। जिस्मों की थकन देखी, रूहों का सफर देखा। इस आल में सरसर में ख्वाबों का समर देखा। जी जी के मरे हैं ये, जी जी के मरे हैं ये, मर मर के जिए हैं। बेजान से जिस्मों में सदियों का सफर देखा। समीन, जिंदगी एक सफर है, ये सब जानते हैं। सफर में कौन हमदम मिल जाए कोई नहीं जानता। इजहार करना मुश्किल सा हो जाता है, तो फिर सहारा लेना पड़ता है खत का। मगर खत में क्या लिखें, क्या बयां करें, जुबान से या फिर खत के जरिए, क्योंकि इसको भी लिखने में वक्त लगता है। तो कुछ ऐसा ही जिक्र है इस गजल में, जिसे जगजीत सिंह ने अपनी पुरसोज, अपनी दिलकश आवाज में गुनगुनाया है।

चांद आसमां हो ये मुमकिन नहीं, दर्दमंद आसमां हो ये मुमकिन नहीं, बेवफा मेहरबान हो ये मुमकिन नहीं। दर्दमंदी अता है खुदावंद की, हर बशर मेहरबान हो ये भी मुमकिन नहीं। दर्द और खुशी इंसान की जिंदगी के सफर में शामिल है, मगर कोई शख्स आपकी हैसियत को ना पहचानते हुए आपको धुएं की तरह हवा में उड़ा देता है, क्योंकि ये फितरत होती है हर शख्स की अपनी अपनी। ऐसी ही अपनी दिलकश आवाज में लता मंगेशकर ने इस गजल में यूं जिक्र किया है, धुआं बना के हवा में उड़ा दिया मुझको।

मर मर के हम जहान को जीना सिखा गए, मर मर के हम जहां को जीना सिखा गए, मुमकिन ना था जो काम वो करके दिखा गए। किसकी सदा ने फिर हमें बेचैन कर दिया, नगमात किसी के नींद से हमको जगा गए। अक्सर सामीन हम लोग अपनों का हाल पूछते हैं, मगर उम्मीद होती है कि कोई अपना या अपने दिल का हाल पूछे, मगर कौन पूछने आता है आज के इस दौर में। हाँ, अगर कोई पूछेगा भी तो यकीनन आंख सी भर आती है और दिल रो पड़ता है। कुछ ऐसी ही गजल में जिक्र है जिसे आवाज दी है नुसरत फतेह अली खान ने।